0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.
1: Sunrise Hits पर आज ही एडवरटाइज कीजिए UK के smoothest Asian hits. Sunrise Hits sales team को 02087477777 पर कॉल कीजिए. Sunrise Hits पर आज ही एडवरटाइज कीजिए UK के smoothest Asian hits. Sunrise Hits sales team को 02087477777 पर कॉल कीजिए.
0: Sunrise Hits.

0: सनराइज हिट्स,
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया। यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर। एडवर्टाइज ऑन सनराइज हिट्स टुडे, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। कॉल द सनराइज हिट्स सेल्स टीम टुडे ऑन 020-8574-7777।
0: सनराइज Hits, the UK's smoothest Asian hits.

0: This is the UK's smoothest Asian hits. Sunrise Hits.
1: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela, resulting in widespread destruction. Thousands have been killed and injured, and survivors desperately need food, water, shelter, and medical care. Go to dec.org.uk to donate, or text radio to 70150 to give £10. Text costs your donation plus standard network rate. See website for T's and C's. Thank you.
2: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर.
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. दिस इज सनराइज हिट्स.

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Thank you for tuning in to Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Don't forget to tune in to our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, online at sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers, for Radio Player and the Nation Player app.
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए
0: दिस इज सनराइज हिट्स द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए एडवरटाइज ऑन सनराइज हिट्स टुडे द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स कॉल द सनराइज हिट्स सेल्स टीम टुडे ऑन 02085747777
0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: अच्छा सुनना, एक गल दस, सच्ची सच्ची दसेंगा।

लोगों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: सनराइज हिट्स, सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया। यूके के स्मूदेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर। सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए। यूके के स्मूदेस्ट एशियन हिट्स, सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए।
1: सनराइज हिट्स, द यूके स्मूदेस्ट एशियन हिट्स।

0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स दिस इज सनराइज हिट्स

0: रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: This is the UK's smoothest Asian hits. Sunrise Hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर.
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. दिस इज सनराइज हिट्स.

0: Sunrise Hits.
1: Sunrise Hits पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. Sunrise Hits सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए.
0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Back-to-back songs brought to you by Southall Travel. From India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर.
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, सनराइज हिट्स. Back to back songs brought to you by Southall Travel, from India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर.
0: दिस इज सनराइज हिट्स, द UK's स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. Back to back songs brought to you by Southall Travel, from India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

0: Pepe's sizzling song of the hour. Find your flavor at Pepe's. With over 260 stores nationwide, we're closer than you think. Fresh flame-grilled chicken with a choice of six delicious marinades. Simply Pepe-licious. This is the UK's smoothest Asian hits. Sunrise Hits.
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स दिस इज सनराइज हिट्स

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर.
0: दिस इज द UK's स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स. Back to back songs brought to you by Southall Travel from India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela, resulting in widespread destruction. Thousands have been killed and injured, and survivors desperately need food, water, shelter, and medical care. Go to dec.org.uk to donate, or text RADIO to 70150 to give £10. Text costs your donation plus standard network rate. See website for T's and C's. थैंक यू
2: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए
0: दिस इज सनराइज हिट्स द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स

0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits. Thank you for tuning in to Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Don't forget to tune in to our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, online at sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers, for Radio Player and the Nation Player app.
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए
0: सनराइज हिट्स

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर.
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, सनराइज हिट्स.

0: सनराइज हिट्स। सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए। एडवरटाइज ऑन सनराइज हिट्स टुडे, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। कॉल द सनराइज हिट्स सेल्स टीम टुडे ऑन 02085747777।
1: सनराइज हिट्स, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स।

की डोली में आई झील मिलाती जुगनू की बारा। सबके होठों पे ठहरी थी आगे कोई बात, ढोल मंजीरे बजने लगे, बड़ी डफली पर

आज यादों की दराज खुले, पुराने खत मिले, कुछ दिल के टुकड़े मिले, वादे मिले, बीती मुलाकातें मिली, बहुत तलाशा मगर तुम ना मिले।

की सिलवटों में लिपटी कुछ रातें मिली, तुम्हारी खुशबू मिली, कुछ मौसम मिले, तुम्हारे लिए लिखे हुए कुछ शेर, टूटे फूटे अल्फाज मिले, बहुत तलाशा मगर तुम

0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.
1: Sunrise Hits पर आज ही एडवरटाइज कीजिए UK के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स Sunrise Hits सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए Sunrise Hits पर आज ही एडवरटाइज कीजिए UK के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स Sunrise Hits सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए
0: Sunrise Hits